0: Climate Tracker on We On World is One.
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on We On.
2: Get the latest updates.
3: Destroy the
2: breaking news.
4: Geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order. And we have been able today to discuss some of the major issues confronting us, such as the war in Ukraine and such as the war in the Middle East. And I appreciate this direct contact between diplomats in Norway and India in handling and addressing these issues. So, Prime Minister Modi, a warm welcome to Norway. The floor is yours.
5: Thank you.
6: Thank you. Thank you, Excellency. Your Excellency, Prime Minister of Norway, dono deshon ke delegates, media ke saathiyon, namaskar. Norway ki yatra karke mujhe bahut khushi ho rahi hai. Yah desh nature aur human progress ke beech harmony ka एक सुंदर उदाहरण है. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी. उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया. आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. फ्रेंड, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ

0: Moving on, Prime Minister Narendra Modi and his Norwegian counterpart, Prime Minister Jonas Gahr Støre, held a press meet today after their delegation-level talks concluded. Prime Minister Modi began the joint media briefing by expressing his gratitude to the Norwegian Prime Minister for the warm welcome accorded to him. The Prime Minister then went on to talk about the sectors that India and Norway have agreed to work together upon.
1: Friends, रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं. आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई. इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और